ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लैके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानु लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

ते आशा सी कमानी आला बत्ता सी ठेयानी आला चढ़दी जवानी आला किन्ना सोना टाइम सी हो माई वाली पट्टी कद

0: बिलो चल होना चल होना व्याह करवाए नी बिलो चल
1: होना। थोड़ा क्या हाल आना दूजा ए चलूगा कि नहीं? नहीं चलिया नहीं बी सॉरी। चलो कोई गल नहीं फिर भी दोबारा ला के देखते
2: हैं।
1: आम सॉरी भरा ये जरा गीत मैं लाने लग्या सी सिस्टम ने लाया नहीं। कोशिश करते हैं कि आप बदल के सिस्टम नू तुहाडे मूहरे रखण दा यतन करते हैं। सारा ही सिस्टम जिहड़ा ना वह हाथ नहीं लग रहा तो क्योंकि जो एक चीज़ थोड़ी जी भी हो जाए ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हूँ देख रहे जो लग गया था।

0: AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां ते संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Metro 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection Steeles and Kennedy 90545-12600.
1: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है. ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं. पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करते हैं. इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकते हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकते हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिए अज ही कॉल करो 416-518-3200. 416-518-3200.

0: Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: यार इना इंश्योरेंस ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घर आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
4: आज
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुझे आशीर्वाद होगी।
2: वे आ जा तो मैं लाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं लाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
4: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव पैरला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखे निजे साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करेंगे। 2 बजे तक साडियां जिहड़ियां फोन लाइन ने 905-799-0999-905-799-0999। अगे चल के CNE ग्राउंड दियां सानू 4 टिकटां एक फैमिली नूं असीं तोहफे वजों दवांगे, ऐसा गिफ्ट दवांगे। अज तों मेला शुरू है। जदों कहांगे उदों फोन कर लियो ते देखदे आं 1, 2, 3 नंबर किहड़े नंबर वालियां नूं टिकटां देणियां, उह तुहानूं टिकटां दे दांगे। छतरी छत्ता रिपोर्ट कहती है अज सूरज सिंह 6:27 ते आया, 8:14 ते चले जाना। मामा चांसे 3:28 ते थोड़ी देर बाद आएगा ते रात नूं 11:55 ते जाएगा। अज मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, तापमान 28 डिग्री। कल नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, तापमान 29 डिग्री। सैटरडे नूं 26 डिग्री तापमान, झक्खड़ झोले थंडरस्टॉर्म ते मीह नेरी सब कुछ आएगा। संडे नूं 26 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, मंडे नूं 25 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा और ट्यूजडे नूं 24 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट वालों ने फैसला लिया कि ईरान नाल जो ट्रेड ने वह सारे खत्म कर देने हैं। और उसका सीधा तो सीधा रीजन है, ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट से अटैक किए जो अमेरिका ना रौला पिया। वह कहने तुम सारे बंब सुट्टदे हो तो असं करिए थोड़े ना ट्रेड। नो नो नो नो नो नो। राती ब्लू जे बड़ी बहादुरी नाल खेडते हुए 7-6 ते हार गए। जो डिफेंस आ चौथी इनिंग च उन्होंने 5 रन दिते। CNE दे असीं तुहानू बड़ी जल्दी दिंदे आ टिकटां, लेकिन उस तों पहलां दसीए बैंकॉक दी गल्ल है। एक टीनएजर सूटकेस विच लभिया जिहनू स्टफ कीता गया सीगा। 17 साल दी इह कुड़ी सी जिहनू स्टफ कीता गया सी और इहदी मौत साह घुटण दे कारण होई है।
1: एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप। 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर। क्विक ट्रक ल्यूब,
0: आर यू रेडी? जंक्शन लई 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम। 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम। 6474294040। तुसी इन्हारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम। 6474294040। 647-429-4040।
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street or call 905-791-4900.
0: Punjabi by nature, unna vallon Icon Event Space in Mississauga tuhade layi pesh kita janda hai. Bahut hi shandar elegant banquet hall hai. Tusi apne function nu ek bahut hi khoobsurat yaadgari mahol andar manao ji. Food number 1, sajavat number 1, location number 1. 100 to 1200 mehmana da swagat karnge Icon Event Space. 87 Dixie Road in Mississauga. Lucky Walia ya Monu Walia ji nu ghanti khadka lo. 905-965-2631. अपनी कम्युनिटी लई खुशखबरी, हीलेक्स वेलनेस फिजियो एंड रीहैब सेंटर खुल चुका है, जिथों तुसी फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टर वर्गियां सेवावां प्रोफेशनल्स वल्लों दित्तियां जांदियां हन। इह तकरीबन सारियां इंश्योरेंस कंपनियां नाल खुद डील करदे ने। काउंसलिंग सर्विस भी अवेलेबल हन। हीलेक्स वेलनेस फिजियो रीहैब, 10930 गोरवे ड्राइव, यूनिट C-X1, गोरवे एंड कंट्री साइड दे कॉर्नर ते। ज्यादा जानकारी लई प्लीज कॉल 905-913-5256,
3: हटा के ए लैंडर ना करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। 2155B ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਨੀਅਰ ਟੋਪ ਰੂਮ ਯੂਨਿਟ 32 905-460-9099 905-460-9099 4609099 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आज खुश तो बात हो गई था।
3: ओ ता होना ही है, जो तो तीनों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे, तई नकदा बन दई
2: है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए
4: चल क्या रहा है यहाँ पर
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com और कोई सेवा
6: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry The Intersection Open
7: ना करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
8: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां
9: What's up everybody this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: आज
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
3: एक लाइफ है जिसे लव है,
4: ये कहते मुझसे सब है,
5: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: थैंक यू वेरी मच हैरी। तो हरिंदर जी बहुत प्यार तुहाडे पिछले दिन ही गाने भी बड़े सोने ते अमन धालीवाल ते तुहाडा जिहड़ी कोलैब कीती तुसीं जसवंत संदीला नाल जी उहनूं वी असीं काफ़ी स्टूडियो च बजाया ते संदीला साहब ने भी उत्थों विशेष तौर ते सुनेहा भेजिया। तुसीं अपने किसी गाने दे बोल नाल अज दी महफल नूं गर्म कर दो ते 22 तरीक नूं पहुंचण लई
1: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ।